और ग्रहों की गति का नियम किस तरह का केपलर ने, ठीक है, सौर प्रणाली की खोज करी है कॉपरनिकस,

0: ठीक है मामा, मैं अभी उसको यहाँ से दफा करता हूँ।
1: Shut up शेखर, don't talk nonsense।
0: कौन है?
1: मैं इससे कुछ पूछना नहीं चाहती। मैं इसके घर जा चुकी हूँ, दादी माँ से मिल चुकी हूँ, और डॉक्टर अंकल रतन को अपना बेटा कहते हैं।